सुनो दोस्त परा रे वो फले के हम लाए वरना ला दिमाग ले अंतिगोन वाहला वक्त बा वेंट इन लो बगले रोट जा शेह बाके मुग अब्बा पाप दें बनो कई अमल फी की तू बा इटालिया अस्त अल्लाह के बामों ने

जिस पर रे वो फले के हम लाए वरना ला दिमाग ले हम चिंगार नो वखला वक्त बा वेंट इन लो बगले रो तजा शेह बाके मुग अब्बा पाप दें बनो कई अमल फी की तू बा इटालिया अस्त अल्लाह।